मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का आज की इस प्रातःकालीन प्रसारण सभा में बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं।

श्रोताओं, आज गुरुवार है। विक्रम संवत 2083 के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि और शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई सन 2026। इस समय 7:04 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं सुनीता सिंह। आज क्या कुछ खास लेकर आपके लिए हम आए हैं इसकी जानकारी मैं आपको दूं, उससे पहले आज के दिन की बात। जब शब्दों ने हवा का हाथ थामा, जब आवाज ने सीमाओं की दीवारें लांघी, जब एक छोटे से स्टूडियो से निकली ध्वनि ने पूरे देश के हृदय को एक सूत्र में बांध दिया, तब जन्म हुआ भारतीय प्रसारण की उस गौरवशाली यात्रा का जिसने सूचना को विश्वास, संस्कृति को पहचान और जन जन की भावनाओं को स्वर दिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, जी हाँ, आज 23 जुलाई का दिन इसी रूप में मनाया जाता है। ये केवल एक तिथि नहीं है बल्कि उस अमर आवाज का उत्सव है जो आज भी रेडियो के जरिए हर दिल में धड़कन बनकर पहुंचती है। तो रेडियो आजाद हिंद के माध्यम से जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप सभी को आज के दिन की, राष्ट्रीय प्रसारण दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। श्रोताओं, हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की स्मृति के लिए मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को मुंबई से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने भारत का पहला नियमित रेडियो प्रसारण आरंभ किया था, तो इसी की याद में आज का दिन हम मनाते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण का पहला नियमित केंद्र 23 जुलाई 1927 को बम्बई में शुरू हुआ था। उसके बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में दूसरा केंद्र आरंभ हुआ। आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी तो बंद हो गई। इसके अलावा इसके बाद भारत सरकार ने प्रसारण व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की। और फिर 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो की लोकप्रियता जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी और इस लोकप्रियता को देखते हुए इसे जो एक नया नाम मिला वो था आकाशवाणी, जिसे आज भी इसी नाम से पूरे सम्मान के साथ जाना जाता है। तो श्रोताओं, ये दिन भारत में जनसंचार की ऐतिहासिक यात्रा का सम्मान करता है। रेडियो ने स्वतंत्रता आंदोलन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपदा और संकट के समय रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम साबित हुआ है। देश की भाषाओं, लोक संस्कृति, संगीत और साहित्य को घर घर तक पहुँचाने में आकाशवाणी का अमूल्य योगदान रहा है और आज के इस डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और आत्मीयता के कारण करोड़ों श्रोताओं से जुड़ा हुआ है और उन्हीं करोड़ों श्रोताओं में से आप भी हैं जो रेडियो आज़ाद हिंद के माध्यम से फिलहाल जुड़े हुए हैं। रेडियो से शुरू हुई यात्रा आज FM, डिजिटल रेडियो, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट और मोबाइल ऐप तक पहुँच चुकी है। तकनीक बदल गई है लेकिन प्रसारण का मूल उद्देश्य जो है वो आज भी वही है कि आप तक विश्वसनीय सूचना पहुंचे, स्वस्थ मनोरंजन पहुंचे और जनसेवा हो। तो श्रोताओं, आवाज़ें समय के साथ बदलती हैं, माध्यम बदलते हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन जनसेवा का विकल्प नहीं बदलता है। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा हमें उन अनगिनत प्रसारकों, उद्घोषकों, समाचार वाचकों और जो तकनीशियन हैं उनको और रचनाकारों को नमन करने का अवसर देता है जिनकी आवाज़ और समर्पण ने भारत की चेतना को दशकों से जीवंत बनाए रखा है। तो एक बार फिर आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज की इस प्रसारण सभा में।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि का प्रसारण होगा, फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। वतन का राग कार्यक्रम में सुबह 8 बजे आज हम बात करेंगे लक्ष्मण प्रसाद दुबे की। बाल सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:30 बजे। आज बच्चों के लिए जानकारी का विषय, हर टोका टाकी बुरी नहीं होती है, हमारी सेना हमारा गर्व। ये कार्यक्रम 9 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज की चर्चा का विषय कारगिल युद्ध। हमारा विशेष कार्यक्रम 9:30 बजे आप सुन सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा आज के दिन पर, जी हाँ, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर। देश के संस्थान, ये कार्यक्रम 10 बजे सुनिएगा। इसमें आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। आज़ाद हिंद कार्यक्रम में चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चा होगी सुबह 10:30 बजे। 11 बजे सुनिएगा नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। और 11:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे रेडियो धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। रेडियो की शुरुआत का आज दिन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, तो इस जश्न को मनाइए रेडियो आज़ाद हिंद के साथ। दिन भर बने रहिए हमारे साथ, हमारे विविध कार्यक्रमों का आनंद लीजिए और दूर से आती इस आवाज़ के साथ अपने दिल का एक संवाद बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद और अनंत मंगल कामनाएं आप सभी को आज के दिन की। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको हमने बताया ही कि सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ,

0: एक गांव में एक बहुत सरल स्वभाव का आदमी रहा करता था। वो लोगों को छोटी मोटी चीजें बेचता था। उस गांव के सभी निवासी ये समझते थे कि उस व्यक्ति में निर्णय करने की, परखने की और आंकने की क्षमता ही नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग उससे चीजें खरीद कर उसे खोटे सिक्के दे दिया करते थे। वो उन सिक्कों को भी खुशी खुशी रख लेता था। किसी ने कभी भी उसे ये कहते नहीं सुना कि ये सही नहीं है और ये गलत है। कभी कभी तो उससे सामान लेने वाले लोग कह देते थे कि उन्होंने दाम चुका दिया है, और वो उनसे पलट कर कभी नहीं कहता था कि नहीं, तुमने तो पैसे नहीं दिए। वो सिर्फ इतना ही कहता, ठीक है, और बस उन्हें धन्यवाद कर देता। दूसरे गांवों से भी लोग आते और बिना कुछ दाम चुकाए उससे सामान ले जाते या उसे खोटे सिक्के दे जाते। वो किसी से कोई शिकायत नहीं करता। समय गुजरता रहा और वो आदमी बूढ़ा हो गया। जब उसकी मौत की घड़ी सामने आ गई तो कहते हैं कि मरते हुए उसके अंतिम शब्द थे, हे मेरे ईश्वर, मैंने हमेशा ही सब तरह के सिक्के लिए, खोटे सिक्के भी लिए। मैं भी एक खोटा सिक्का ही हूँ, मुझे परखना मत। मैंने कभी भी तुम्हारे लोगों का फैसला नहीं किया, तुम भी मेरा फैसला मत करना, मुझे मत परखना, केवल मुझे स्वीकार कर लेना। सच है कि जीवन का अंतिम सत्य अगर हमें याद रहता है तो जीवन जीने की कला हमें आ जाती है।
1: जीवन सौरभ
2: न जी भर के देखा न कुछ।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 171 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुणी, देवता हैं मरुद्गण और मरुद्वान इंद्र, छंद है त्रिष्टुप।
1: प्रतिव एना नमसाहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमतिं तुराणाम् रराणता मरुतो वेदाभिर्निहेडो धत्तवी मुचध्वमश्वान्। हे मरुद्गण, हम स्तुतिगान करते हुए विनयावनत हो आपके समीप आते हैं। तीव्र गति से जाने वाले आप वीरों के श्रेष्ठ परामर्शों की हम याचना करते हैं। इन ज्ञानवर्धक स्तुतियों से हर्षित होकर किसी भी प्रकार के विद्वेष को भुला दें तथा रथ से घोड़ों को मुक्त कर दें, यही हमारे समीप रहें। एष वह स्तोमो मरुतो नमस्वान हृदा तष्टो मनसा धायी देवाः उपेमा यात मनसा जुषाणा यूयम हिष्ठा नमस इद वृधासः। हे वीर मरुतो, इस विनम्र भाव तथा एकाग्र मन से रचित स्तोत्रों को आप ध्यान पूर्वक सुने। हे दिव्य वीरों, हृदय से हमारे स्तोत्र से प्रशंसित होकर आप हमारे समीप आए। आप ही इस हव्य को बढ़ाने वाले हैं। स्तुतासो नो मरुतो मृडयन्तूत स्तुतो मघवा शंभविष्ठः ऊर्ध्वानः संतु कोम्या वनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा। स्तुतियों से प्रशंसित होकर मरुद्गण हमारे लिए सुख सौभाग्य प्रदान करें। उसी प्रकार सबके सुख प्रदायक वैभवशाली इंद्रदेव भी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमें सुखी करें। हे मरुद्गण, हमारा शेष जीवन प्रशंसनीय सुंदर तथा योग्य बने। अस्मादहं तविषादीशमान इंद्राद्भिया मरुतो रेजमानः युष्मभ्यं हव्या निशितान्यासंतान्यारे चक्रमा मृणता नह। हे मरुतो, इन शक्तिशाली इंद्रदेव के भय से हम घबराते और कांपते हैं। भय के कारण आपके निमित्त तैयार की गई आहुतियां एक तरफ कर दी गईं, अतः आप हमारे ऊपर खिन्न न हो अपितु हमें सुखी बनाए। येन मानासश्चितयन्त उस्रा विष्टुषु शवसा शश्वतीनाम स नो मरुदिभिर् वृषभश्रवो धा उग्र उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः। हे इंद्रदेव, आपकी जिस सामर्थ्य से प्रेरित होकर किरणे नित्य उषाओं के प्रकाशित होने पर सर्वत्र आलोक फैलाती हैं, हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव, पराक्रमियों में सर्वश्रेष्ठ शूरवीर तथा बलप्रद आप मरुतों के सहयोग से हमें अन्न प्रदान करें। त्वाम पाहीन्द्र सहीयसो नृन्भवा मरुद्भिरवयात हेडाः सुप्रकेतेभिः सासहिर्दधानो विद्यामेषं व्रजनं जीरदानुम्। हेन्द्रदेव, आप शत्रुओं का संहार करने वाले नेतृत्वकर्ताओं का संरक्षण करें और मरुतों के साथ रहने वाले आप क्रोध से रहित हों। श्रेष्ठ तेजस्विता से संपन्न तथा शत्रु विनाशक सामर्थ्य को आप धारण करते हैं। हम भी अन्न बल और दाता की वृत्ति को स्वाभाविक रूप में धारण करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 171 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए इस पावन यात्रा पर हम और आप साथ साथ चलें। श्रोताओं, जब से कुदरत है, मनुष्य का अस्तित्व है, तब से ईश्वर की अनंत खोज जारी है और ये विश्वास भी कायम है कि कहीं तो कोई है जो दुनिया की बागडोर थामे हुए है, इसे गतिमान करता रहता है। ईश्वर क्या है, कहाँ मिलते हैं इसके पद चिन्ह, ये एक सनातन प्रश्न है जो हर कालखंड में मानव मन को मथता रहा है। कि जर्रे जर्रे में बसते हैं भगवान,

श्रोताओं, ईश्वर प्रेम, आस्था और विश्वास का तालमेल है। वो रहम है, रहमान है, दीन बंधु है, दयानिधि है। इसलिए जब भी मन में ईश्वर की तलाश का प्रश्न उभरे तो किसी को माफ करके देखिएगा। आपको अपनी रहम में ही उस खुदा के दीदार होंगे। किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर हंसी की रंगोली सजा कर देखिए, यकीनन जगदीश्वर आपकी आंखों के सामने होंगे। उनका कोई आकार नहीं, वे कण कण में व्याप्त हैं। हर दुखियारे की हंसी में, प्रेम की तलाश में भटकते हृदयों में, स्वयं के पूर्ण होने की यात्रा कर रहे साधकों में, संगीत की झनकार में और गायन की मिठास में, हर कहीं वो ही हैं।

जीव मात्र से प्रेम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। जड़ हो या चेतन, सब में ईश्वर व्याप्त है। कम से कम भारतीय मनीषा इसी सिद्धांत पर विश्वास करती है और हमारी आस्था धर्मिता इसी यकीन के इर्द गिर्द बुनी गई है। पानी, हवा, आग, वृक्ष, नदी, पुष्प, हम इन सब में ईश्वर को महसूस करते हैं, उनके होने पर यकीन करते हैं। हम मानते हैं कि ये संपूर्ण जगत उस विराट का ही स्वरूप है।

0: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, ये है रेडियो आजाद हिंद। रात्रि के 10 बजने वाले हैं और अब हमारी सभा समापन की ओर है। तो चलते चलते हम आपको बता रहे हैं कि कल यानी 24 जुलाई शुक्रवार को हमारी सुबह की सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। सुबह जब हमारी सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से सुनिएगा ऋग्वेद के ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, कल कुंवर चैन सिंह की पुण्यतिथि है तो उन्हीं पर आधारित होगा हमारा ये कार्यक्रम, सुनना ना भूलिएगा सुबह 8:00। 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम आमने सामने। कल इस कार्यक्रम में बघेलखंड लोक गायकी पर आप चर्चा सुनेंगे। लोक गायक शशि कुमार पांडे से मनीषा चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। सुबह 9:00 सुनिएगा मुशायरा हमारे कार्यक्रम वागर्थ के अंतर्गत। सुबह 9:30 सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम जो कि आधारित होगा पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा के संतूर वादन पर। 10:00 परिक्रमा और 10:30 का वक्त होगा कार्यक्रम आजाद हिंद का। श्रोताओ, कल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती है तो उन्हीं पर आधारित होगा हमारा ये कार्यक्रम आजाद हिंद, सुनना ना भूलिएगा सुबह 10:30। दिन में 11:00 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। कल इस कार्यक्रम में

जिस शख्स को हमने शामिल किया है उनका नाम है सत्यदेव दुबे। दिन में 11:30 बजे आप सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से हमारी कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए और दीजिए अब इस सभा से अनुमति आपके अपने पूर्वाखले को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।